0: نوديها 2 ميجا هرتز تيفي اف ام.
1: ए कोडको फहाते जेहिलामा आहार में यहाँ कैरी गति में मी है उन दुगो आने ये ना जा पिन नंबर नुफेन ने हिसाब एगन तिबे मानी
2: आ
3: को बा मिता हूँ ना डस्टबिन एहरी दो मैं वैसे डस्टबिन करनू लाम मानी

कितने बातें के खवाए की बाविया पंडित की आदि फवालवे मी इतिहास हतरवना हर नुकी फिल्म लक्ष्या के कितने बातें के अस्तु लवे किया फवा एकुस्टिक खवालवे मी लव तैयार को फवनी वरंग आदागे

0: मी मरियम रिफ्का रशीद, रिफ्का गैड, दिवही एफएम,
1: दिवही एफएम,
0: दिवही नाइक, दिवही नाइक।
2: नोदी है एके मेगाहर्ट्स, दिवही एफएम।
3: लवे कफ़ा हो,
4: लवे।

0: नुआ दी है 1 MHz दिव्य ही FM ईशान हमारा दोबारा गुट
1: अल्लाहु अकबर अल्लाह

ऐसा से बाय लवता की नुनी में वाहक तके ए वाहकता मिहारु आ अडका आ रूहकाय एफोरी

0: Viral Vibe. Viral Vibe.
1: Me haftage shoga demme balalani adi eme fahum me balalani chori ki baate milavya Shweta Pandit adi Amit Kumar ge adun kiyafwa milavage music tayyar kuri pritam milavike dehas havana haruge Bollywood action film Fight Club members only ge himna fawa lave lava release kurita duas kole fahum mihumani milavya Pakistan ge pop lave ka de meduhuri ekgwekkan faha kuran fashafa ऐहा हिसाबों फाँहा गवेगें दिए मिलावे कि पाकिस्तान के पॉप लेजेंड अली जफर देहा स्टिम्वना हरु एना के फुरतमा अल्बम हुक्का पानी के हिमनाफवा चन्नो लवागे अनऑफिशियल रीमेक कंग

0: nuo 10 MHz Divi FM. Aba dues emme gatuka.
1: Reed, aba dues Reed.
2: अटकन बटकन दही चटोकन मुसुआ मोटा रुपया खोटा माला टूटी बेबी छोटी
3: मम्मी कुछ भी खाए पर होती

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: लोबी लोबी